अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।

चल रे अमीरन ए चल रे फकीरे चल रे अमीरन टक टक टक पक चल रे फकीरे दिबी टक धीरे धीरे बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी मेरे ए ओ बंदरिया अपने बंदर से।

यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

के कहाँ चली, ओ मेरी चंपा कली। पलट ए पलट ए पलट, तेरा ध्यान किधर भाई, रूठ के कहाँ चली, ओ मेरी चंपा कली। कब तलक फिरूंगा मैं इस तरह गली गली, तेरे बिना मेरे दिल की दिल में रही जाए। हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

आंख भी दिखाए। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, मेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

हाथ न मलिए जनाब, होंठ न चबाइए, बेकदर हो प्यार क्या है तुम न समझ पाए। हाय हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये बताना।

0: जाना सीखो जी, आ हा हा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी।
1: कैसे?
0: दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी।

सुहानी है, तड़प रही है ये जवानी जवानी, अगर रानी और रानी रानी रानी, तू है हुस्न की सरकार, मैं हूँ इश्क का सरदार, तू है बुलबुल।

मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, ये मैं हूँ तुम्हारे दम से। यू टेल मी समथिंग एंड आई टेल यू समथिंग, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया ये तुम्ही ने सिखाया, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच मच। सच सच सच ओ डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच।

गार्डन गुलाब है दोनों खिलके, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा दूं चमन दिल के। गली उल्फत की ये गुल उल्फत का, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच।

रहो झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूमो बन के घूम रो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा।

मनोहर मोहन के दर हरिओ।

मुझको रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे

ਸੇਵਾ

0: शरणार्थी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे सुन अरे सुन सुन सुन सुन सुन हर दिल को चाहत का जाम दिए जा जादुआए आराम दिए जा हर दिल को चाहत का जाम दिए जा जादुआए आराम दिए जा
1: पटाख तुम पटाख तुम पटाख तुम पटाख।

है, तुझको अपना गम है, यही क्या गम है, जब तक तेरे दम में दम है, यूं लूं तो यूं ही जिए जा। ए, वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के सुनता जाए गमों के खाते, वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के सुनता जाए गमों के खाते, सारे झूठे दिल अपना के घूम घूम के यूं ही जिए जा। आंखों के आंसू भाग जाम लिए जा, दिल को के चाहे आराम लिए जा, हर दिल को चाहे।

0: सावित्री जी, आपके पति रे अब तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
1: आइए। ये क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
2: सुनिए, इनसे मिलिए। जी है मिस्टर।
3: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है, मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
0: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
3: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
2: नमस्ते।
3: मेरा छोटा भाई
1: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
0: वैसे लोग मुझे मनोहर गायक भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
3: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
0: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
2: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा चंपा से मिलकर आती हूँ।
3: आप बैठिए ना।
0: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
3: हाँ सर, आप होते तो शादी का मजा ही और था।
0: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खा नहीं रहे?
3: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट केक खाकर बहुत बढ़िया।
0: एक और खाइए।
3: अजी नहीं साहब।
0: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है।

दुश्मन जिसे सताए इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा, तुम हो नजर का कच्चा।

किस्सा अभी है कल का, तो रूठी थी घर की मलका, सुरमा इधर से झलका, गुस्सा उधर का हल्का, सुनते हो मेरे।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा।

हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

चंदाना ये चोला काला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना ये गोरे गाला चंदाना ये रेशमी वाला चंदाना ये चोला काला

में किधर को जाता ही दंडाना, क्यों पास न आता ही दंडाना, जा मारी ये बाता दंडाना, दिल तोड़ ये घाता दंडाना। मैं किधर को जाता ही संदाना, क्यों पास न आता ही संदाना, क्या मारिए बाता संदाना, दिल तोड़िए घाता।

पाकाना रंगी की पाका पाता चूता रंगी जालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

चंदाना, सूरत से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे खरीब है चंदाना। हमें माना गरीब है चंदाना, सूरत से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे खरीब।

کٹوں گا وہ

चांद कुछ थकी थकी सी आधी अधूरी सांसें, कुछ रास्तों के बेनाम से मोड़, एक शाम की फूली हुई सुर्ख व सुनहरी शफक, ये सब उस शायर का सरमाया है जो बूंद बूंद पिघलती रात अपनी ओक में भरता रहता है। कुछ सुनहरी सी चांद की बूंदें, कुछ सब्ज रात के पत्ते जो हथेलियों में पड़ते हैं और सूख जाते हैं। एड़ियों पे उचक उचक के शायर चांद को छूने की कोशिश कर रहा था कि रात बुझ गई, वक्त खत्म हो गया, और वो जो शायर था ना,

0: धो सुर में रेको सुर में हटको मत हटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए
1: लोगे तुम बलाए।
0: अरे नालायको हम नहीं तुम
1: अरे नालायको हम नहीं तुम
0: तुम लेके बलाए फिर देंगे। अरे देंगे दुबाए
1: देंगे दुबाए।
0: शाबाश तो बनी रहे जोड़ी क्या।